एलजीले आयो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज, अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई, नागरिकता भए पुग्छ। हरेक घरको खुसी घर घरमा एलजी। एलजी लाइफ गुड।

0: कुस्मको बडगाउँ मा खोल्यो
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेन्टर सीडीसी।
0: हाम्रा सेवाहरू
1: होल बॉडी चेकअप,
0: थायराइड परीक्षण, भिटामिन डी चेक जाँच,
1: मधुमेह को सम्पूर्ण चेक जाँच, एच बी ए वन सी जाँच, लिपिड प्रोफाइल, लिभर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी,
0: यूरिक एसिड, बाथ, टाइफाइड परीक्षण,
1: गैस्ट्रिक को परीक्षण,
0: मोटोपन को परीक्षण,
1: गर्भ परीक्षण, निसंतान परीक्षण एवं पाठीघर को कैंसर को परीक्षण,
0: रगत भ्रीय एवं दिशा पिसाब परीक्षण।
1: पुनश्च यहाँ हरेक दिन अत्याधुनिक प्रविधि को मेसिन द्वारा धौलागिरी में पहिलो पटक थायराइड तथा भिटामिन डी को चेक जांच मात्र एक घंटा में गरिन्छ।
0: सम्पर्क स्थान
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बडगाउँ कुस्मा पर्वत बागलुङ मेडिकल हल रहेको नयाँ भवन सँगै।
0: सम्पर्क फोन नंबर 0674202727 0674202727 मोबाइल नंबर 98511819918।
1: सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बडगाउँ कुस्मा पर्वत
2: जसको नाम नै पर्याप्त छ।
3: दिदी बहिनी
2: दिदी बहिनी
3: दिदी बहिनी
2: रेडियो दिदी बहिनी हामी गर्न सक्छौ।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: रेडियो दिदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़ हामी सबैको साझा आवाज़।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक 11 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: extreme energy drink.
1: निकट माता दीदी बहिनी, निकट माता दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

ஹலோ ஜுதல்பா ஜுதல்பா ஜுதல்பா தொழிலே ஜெதோ நியோ அதை ஒன்று என்று சொன்ன அதிகமாக சீதா துணுலாம் நிச்சயம் அனுமன் அந்த சுசி வதஞ்சி ராஜேந்திர டங்கோலியா பசது தன ஜெராம் அல்லே ஜெஜோ ஹா சிகோ சிகோ தஜ்லஜி விசேஷ நிச்சயம் தசினி கனா விஷ்ணுகு நகச்சக ஜாத்ரா பர்வ அதே சுனா சம்சமாய் விஷய வஸ்து பக்கே கேண்டு ஜியா ஃபோனிம் பக்கே நியாவுகு தஜாஜோ ठीक तजलजी जो जुन थ फोन इन करने आयोजना 5376779530303 थलिया के फोन इन दिशा थक भाषा खिलान दिशा नवान दिशा थक भाई तो बुलंकित कोताइन दिशा अलग छुना समसमायिक विषय वस्तु बाकी चीज खुला बल नहीं है अथे थाना जीवन वही को तिथि आरो अब्रो थटिया कोठिया नब्दा दुख सुख वह चुनी सुखजीवले उली बेबे जीमुखो तर दुख जो लाचा लिख चौपिसाए थिरी नागत गएन अझ दुख जो मनोयत तनाव बिगो ज्या सुरुजी अलि थुक्रङ जीवन वगो समस्या जङ्कित समाधान या त याको चाहे कुत यपिन यो कुतु तर छुसु मनो त थजको समस्या त समाधान याउ छिबे जीवन सिरेका छुए त नेजिलिपिन चिस ख थुके थे आत्महत्या त कन ध्यागो या तना नान थुक्न बेतौ ख आत्महत्या थम थै त सिरेका छुएको प्रवृत्ति ख गु प्रवृत्ति एन योगसित तनाव लागेको थङ्गुने थ चुनेको थासे सिवे सार्वजनिक थासे पब्लिक थासे थम थाइद सिधेक्यो कथा थिति थ यो घटना न सार्वजनिक ज्याचङ थ प्रवृत्ति नेता जुसा व मनुया मानसिक कमजोरी जग पकान मको थके छौ समाज व राज्य संवेदनहीन प्रणाली दुने सोचक निसतन ज्ञान वै अथ लिपङ्गीले देश थिति थासे मध्ये यी त्रिपुश्वर राजधानी विभाग नियन जोगको घटना यता कया ट्राफिक नियम व नगर प्रहरी दुन्न विवाद खनेदोको घटना ब्याउको ख थुके कारण ख जरिवाना अले कर राजस्व छु या धैपिन त हजुर छु या धैपिन त सुविधा छु म विषय दर्तनी चाहिँ राजस्व कर जग राज्य नीति थोय खलाले तङ्कुने यो उद्योग धन्दा बन्द ज्याचङको कारण न थोय ख छु राज्य नीति दक्ष जनशक्ति विस्थापन थन विदेशमाकी उत्पादन जोगो सामान्त आय डेना कमिशन नेगु कर राजस्व संकलन यागु थुल्जुक खलाले अरे उत्पादन यागु कल कारखाना उद्योग धन्दा यता पर्यटन सेक्टर यात कृषि घरेलु उद्योग यात छाय राज्य पछिपाकि प्राथमिकता दिमको थज्याउ खेन चेथौ चर्चा पर्छ विशेषणा चिसन थो व्यवसाय या धैपन्त चाहिँ राज्य पछिपाकि छुय सुविधा मरुगु अथे कर राष्ट्र जग इम्सा चाहिँ छौ टार्गेट या थियो अहिले सुविधा छुए मगेको थियो खिगुन्तन छु थियो अनुभव दुस थोया ज्याजो पके कर्णाली फै अहिले ज्याउदने आज दक्षिण पाउने थन सानबाबु महर्जन पके वेकन चुयादिगु लेचना दिगु अहिले सहना ब्यादिगु अहिले थुके अनिता महर्जन सहदु थमङ्का सख सुला सुला आइत थमे पकिसकेपछि भने

0: हमने भी जो संभव मर्जन व अंत मर्जन या तो नब्रभ चीज ज्यादा थोड़ी ज्यादा चीसा जो हना खुद जो व्यवसाय व्यवसायले चिसा छो कर राजस्व प्रचनको थियो खैतकया शुद्ध छु मधुको राज्य पछि बाँकी थो खण्डु नै छु चित आइदे तुसा छु छुगु नुले थियोको खण्डुसा त्यहाँ दिपै 5376239538003 ढोलेके फोन दिन्छ धन सुझाउ दिन्छ वके त लसु सेवा गर्न दिन हेलो जनवर जी मफु
1: मफु कृपासी जगन र
0: मले जदन
1: चितन
0: अर्जुन न धन अर्जुन
1: तो समस्या ना पड़े चिकित्सा ऐसे ही क्या लगा मस्से में जी चीज सही लगानी है समस्या दो दर वो आठ मार्ची है ना वो तो नहीं रास्ते तो नहीं खाते हो किस्मा तो नहीं और किस्मा वो नहीं मुझे मगा अब थोड़ी समस्या है ना मतलब मिशन तो नहीं हनी या किस्मा तो किस्मा वो
0: नहीं
1: मुझे मगा जब गणना लेने माला चुना जाए माली मखला भगवान बुद्ध जी भगवान बुद्ध जी रंगात को ना समस्या दो व्यक्ता मखला पास व्यक्ता जी समस्या मरे माओ खानी है जी रंगात हो जाए बड़ी ज्ञान प्राप्त या रंगात को ना व्यक्ता समस्या व्यक्तों दो और मैं समस्या वो लगा टाइम चीजें तो आप अभी वो समस्या ना पंच चीजें व्यक्त थोड़ा वो बोला रहा था थापिंग डालना पड़ेगा अरे जीव हो
0: अच्छा जीव मत
1: अच्छा जीव हो अरे जीव ओके ओके लाइन ले चीपिंग से ठहरते ने छोची मीडिया थे मुने तो खटे माओ जिन मीडिया थे खोले माओ खोले छोची चीज ने समस्या समाधानी तो लोग
0: खा
1: नहीं अच्छा लगन चीज़ आता है नहीं, दुबला लग दुक्षण सहाय जाएगा, मोर लग सुना जाएगा, मतलब पास ये तो इतने मावे चिड़ा से उल्लू खाओ नहीं, मतलब
0: वो समाज परिवार थे वो आज वो बुची ना दूँ मतलब चिवो,
1: आज वो
0: गुल्ला थे जब वो मनु सताया मन था मतलब आज वो किस्मा समस्या तो जाए थोकता जाए चीज़ निभाया अगर समस्या दो पिंडर गुहाली आओ मतलब तो फूस आते उगता जिसमें वो निश्चल लास रहा था जब समस्या तारों चीज़ जी मुख
1: जीपनो लगी जगह तो खा तो ठंगा सुर चूसने तो ब्रिकिटी है वाला चला मगला तो समस्या समाधान है मौसे चीनी सुरा से पहने वाली एक आपसे खड़ा वाली
0: नगतो या वो
1: लिखा था असना तो जो थे समस्या का जोल कम वाला रहा था वो समस्या तो गैना समाधान है वाली मौसे उधर से नगतो या ना उधर समस्या ते
0: तो
1: जो लोजी जीना ची माना या मार ची तो जो चिंजवाते तो जो लोजी ला चिन्नेपारी मसिकाटो ख मला तो जे जे मया माल थाव या उन्या ब्रे वे परंपरा किस हनात न जसे मिले न रे सो
0: ओय समय अनुसार तो युवा वे चनी जीवन तथा वे ख तो युवा दिउ न मला अले वो युवा इतना आत्मसत्य न जिस चाहिँ जो समय अनुसार समय सापेक्ष गुण यो फाइदा न उखनया यिनका चाहिँ सहज व सरल जीवन चाहिँ म त स्वयंमा
1: समय अनुसार कर भरे न माओख चिस कर पला न माओख राज्य मुख्य स्रोत कर खो कर फुल अनुसार छिटा जन सर्वसाधारण जनता सुविधा सुचुल
0: चिसे
1: कर पुला ओ सरकार चोपिन्द सुविधा बिउ किसम चिसे कर पुल मुखनी सर्वसाधारण जनता लागि कर पुल्यो खिस सुविधा खे कर जी कर पुल्यो जी विरोधी मुख म कर फुला छिटा सुविधा सुटर ल पहुँच वाले सुविधा बियो मलाई पहुँच वाले राख सिंगापुर होना अमेरिका होना थाइल्याण्ड होना वासा जाओ
0: गाड़ी करोड़ करोड़ गाड़ी गए अले सुविधा न उठा क्या हो जो चंगा जो एक एक सुबह मीडिया थे बुद्धि क्या दिव्य जस दिन छिउन बुटिदैन जे भल सके छैन जस दिन बुटिकाको निम्ति ल्यादु पाँच दिन छ 7279 पाँच दिन छ 8803 थोलेको फोन नि छ थौको नुवाख निर्धक गर्ने छ थौको नै छिगो देशे गजबको परिस्थिति दु थकेन चिसँग सचेत नागरिक ज्या नि अनुभव अवस्था दु थन सुझाव थिएछ वेक न लक्ष्य छ पनि दिन हेलो जुजुलबा
2: हेलो जुजुलपा राजेन्द्र जुजी यक्कुडे हो
0: एकदम बेकुफ गयो होला एकदम मन त यहाँ डिस्टर्ब या त छौ चाहिँ माइन्ड डिस्टर्ब या हो हजुर मानसिक तनाव हो ऊ चाहिँ एकदमै बेकुफ ज्यादा आयो
2: आठौँ हाम्रो लास मन दिने
0: एक
2: सफातना घटला मोबाइल स्याट्ने भो पनि छौ खाता घटला मोबाइल स्याट्ने मस्तै मस्तै फासेतना मोबाइल स्याट्न
0: सुतासु
2: खलामा आउन खला दैमा अहिले आतामा लाग्छ बुढा बुढीमा एकै कोठा छ टाङ्गो फुलाटी एकै कोठा छ टाङ्गो फुलाटी सुता छुरा माउ खान ल्याफै मखो थपिन उतास थपिन दिने दसे ए भनिटा दसे जी काठमा जिउ अनुमानका
0: छमा चाहिँ कडा जी मल्का हामा जुन मिसिया चाहिँ मलाई छो अनुशासन त्यो मर्यादा त्यो हजुर चाहिँ यहाँ माथि
2: छौँ अरू यहाँ मर्या होला को अनि मा हो नपात युजको टुक्रो बुढापट्टि पिल्छ कलियुग जाएला को अनि मा लिउँ उहाँका वो ठाउँ ठाथे खे चुनाव गोलका
0: ठाउँको
2: नपात डक्कुसिया छे झ्याका खला मेकअप उलिएर वाफ्ट छ वस उलिए ठाउँ मा ध्यान ध्यान
0: तर कमाइ चाहिँ
2: स्वयं
0: नबस
2: समय नकमाएन पछि छ नि त गाका ठाउँ अहिले समय मका समय सोया हिला छिरी मनमा पक्कै खन गर्ने ठाथेन्दु अखिया ख समय सोया छिपी समय न पर्वाना हुनुमा अरू कर्यो खलाम होला
0: सेवा सुविधा
2: ल यसको त खलाएका ल रियो अस्तानै वेका भए त जो पछि अनुरोध ढुका ल वेका पनि त कोटी कोटी प्रणाम ढुका
0: अनुरोध आग्रह
2: आग्र प्रणामलाई फ्यामिली ल ल
0: ओला चिसन अनरोड फ्यामिली
2: अ अनरोड का अले चाहिँ नि बरु चाहिँ यो कन्दबेका हैन दुई कन्दबेका हैन रास्ता हैन मखला साने छाट हुएका ओलो चित्त बामलाउ खन्दु
0: ओ लटो दु मेसो चाहिँ निक मलगा
2: ओला रे अब टस्क एकदमै खराब हो झुलका थोक
0: ओ हजुर
2: आ चाहिँ नि मसु आखुन चाने काल ल आगोन बिहार सरल बिहार हैन चाने वसला जलगे मजुलका
0: ओ
2: डेन्यू टाइम हे मजिल्ने आसो ठाउँ छिदम्रे कम लय ख जेना डनावसा लय चले आमा छिजन्त पिनी आसो छिजन्त पिनी ठ्याक्क सोएबले नाभ नाभि जम पोटा ल जिन्हाटन उग बाले ल मूर्ति कला डक्वे दियाजे पि
0: डक्वे आठमे डक्वे तरसै जुल लिउ खन जिन्दो चन्नबारु जुवेकनन थे चन्दि गुदु थे जुक थौ लजगा डक्वे थुक थाये मनाउन जुल हजुर
2: अले अब मस्तेसेन मैले त आँखा भन अफिस ल्याउँछु होला विदेश ल्याउनुहोस् होला नाप नाप प्ला प्ला छियो कलाकृति छियो ड्यो देख्यो हरे कन्दु नि काष्ठकला डो मुखला हस्तकला डो नुहाइ जाइपिन्दो फुक्क दुनि मोटो कला त फुक्के ठाउँको डु नि जस्तो कुपी मन त
0: छुख
2: लगाए जुल हजुर हजुर भयो दुःख लगाए जुलका ओछो चाहिँ
0: छो अथवा देश या राजनीति पक्षपाखी चाहिँ थजाको उत्पादन या त चाहिँ मलाई सोचिसँग प्रोत्साहन दिमाग हपातिवा दिमाग हो तर थाहा उल्टा झुसाउँदो छ र
2: नै
0: थाहा आयात या हो मलाई उद्योग धन्दै त चाहिँ तरासै या हो कमिसन यो अझै अझैकै सोचाउँदो राजस्व उठायो कर ट्याक्स बढाइयो
2: मलाई बिजुली बढाइ थाहा छ
0: बिजुली बढाइदियो मलाई लाग्दो छ
2: त्यो फोन नसि मगला
0: हजुर छेम्पु पास एपले न उकेन बढाउँदो
2: ल यो न टाल्थे छ
0: ल यो
2: ल यो तार ल यो तार टाइममै ल बढाइ तल नेपाली मासु भएको जिल्ला ल ए म बढाइ मगला जनता पनि सुविधा बिमल नि हरेक अर्को बढाइ त्यहाँ स्याहारे भए गुण मनो त ज्यामो दया त नि कमै म पिँ दया त नि जिवा तिवा ना जीविका मला तपे यो कुरा दु मखला अरू जुवा दन्त पिउ न व्यथा कथा सिका चाहिँ या माका आठलाई नुम सरकार जल्ने
0: नुम
2: सरकारहरू सक्ने लेटाका ने फुसा उयो त मानि त दै सक्ने लेटाका ऊ ढ्याका चुन मासा पर्छ मानि त उहाँलाई पर्छ यसो सोया मल्ने दन्त पिउ त मखला ख ज्यास आए नगरपालिका ज्यास आए चित दन्त पिउ त पर्छ ठ्याक्क सोया या सक्सिन माने मिने ए खका आवाम सरकारलाई खास खका लगा तासका सक्सिया यही आना आना पर बिता तेने
0: सुई
2: तत्पर जी अमको थरे ख नाप गछ ख अथे फे जाकला रासा आन सुख गछ टामस्का आसो सरकार ल लखे दय छिंग त तक
0: सरकार चाहिँ चेन्ज ल मन तर जुन पहिले भि पुनाए जुन जस्तै आर्थिक मन्दी सुख समृद्धि नाराजको ख मलाई बेरोजगारी न उक्ने दु अहिले ल यहाँ गर्न दु मोटो सिबु मोटो सिबु थिएन मरु
2: कम्प्युटर मोटो
0: गुले मोटी ठिकान थले छेउ गुठी थजको दुनि परिवार समाज पाकेन सचेत जुया मलाई छौ ठाउँ नै आम्दानी स्रोत भुक्तान बलकी उख मलाई थ पाके थजको छौ सल्लाह सुझाव दर्ता छ न मलाई छि त इच्छित अपुनी मलाई समस्या लाभिँदैन छिसँग समाधान लम्फो चाहिँ मालिक है गुठी परिवार पाकिन थियो खोजे जुई माथि छ यहाँले मोबाइल यसो सुया म न समय बितिदियो छ चाहिँ आउँछ प्याची मुजुते छ
2: ठोला चितल तले मिटिङ त या मखला
0: हजुर
2: फल्ला थाय थे त्यसको साथ थे थे यामले अथि यामले ल्या चाहिँ छ अयो चाहिँ वातावरण खते तया चाहिँ नि चाहिँ याउन तासा
0: जीव अस्तित्व लेनी मन मक्सुला तमादम मस्त दक्ष जनशक्ति त डोको प्याउन चाहन्छु मलाई जनता त्यही मन रहेछ अहिले श्वेत शासन खाले बिचारियामा लागेपछि
2: बराबरी मात्रै
0: थाउने अझै नीति थियो
2: যথা পোলে ন দোষ দুঃখ যা দন থাকে কাম লাসা জ্যেষ্ঠ নাগ তস্ক দুঃখ থাকে
0: খনি খ
2: তস্ক দুঃখ কেন বছর বিদেশে এবো না আনাথন দশা জিয়া মা রেবো না আর টাইম এমতন কোন আমর টঙ্গু না আমর এখন টোল টোল পেতে আপনি কুয়ে দো তামাল লাস জিমু জিও টাকা জিম পালতি না অস্ত ব্যস্ত ছে খানাং খাডোলা কাতি মেয়াতে যা পানে ফন ছে সোখ দেখা দো
0: ইকু দো তোয়া তো পরি না পা
2: তো মলে তো বিদায় আমর নিক জং কো শিরে অঙ্গ লা ছে আয়ো দুঃখ কা সুনা সুই দুঃখ খারি দি ওগলা আয়ো কো খলা মুখতলা ফলিয়ে আনা মে মে পিনা থরিয়া আজি রে দুয়া খলা দাই তাই বিন দয়া তুমি গুলদক খলা অস আইলা
0: জুলি মনছো জি
2: আছে রে কে তো তুমি বরাবর ছিস তুমি আমতে খকয়া জন না মলা সদা তুমি খকয়া জন না জি নিহে সঙ্গ থর খন লা দেই মশু না সি মলা আরে জি খ থে থে
0: জি জি একদম কোতা ইনছো দ মনছো জি নিয়া তুমি না তুমি ছো টাইম সে ওয়ে উঠ গাজে জি জি বন্ধ দে বন্ধ গেছ না
2: সেটা জি কই কত না বার কা থন দেই
0: ঠিক আছে সুবে সুবে হাজার মন সব সাকিজ ওক বাল বগে আলে শিবনাথ লেতন যাতে পরিচা হাতন সমসাময়িক বিষয়বস্তু বগে কেন্দ্র জিয়া খালামলা বেকে রেখা কোটাইন চনগু পাঁচ তিন ছ সাত দুই সাত নৌ পাঁচ তিন ছ আঠ আট জিরো তিন ফলিয়াকে ফোন দিছ থাকু নৌগা খান নির্ধ কাতিয়া দিছ সমাজ পরিবার পাখে নুমাকে মাগু ছৌ যেসব সল্লাহ সুজাব কে মাগু থাকু খা ইয়ে কুদু তখনই ছেকাপতি দক্ষ জনশক্তি ল্যাম পুজা পিয়ামানো চঙ্গু আলে অগ্রজ পিন্ত গুতা ঠাকুরে চঙ্গু তো খনন্দু জিব নগুলে লুমঙ্গিমা আলে গুঠি পাখি হেন তো খে ছৌ সচেত নাগরিক কথা খে খন্ডা থাকে সল ব্যাকি খন্ডা সমাধানী লোক চাকি ফই শুন যাও সঙ্গে পাশে দু জেরাম টেকনিক হ্যালো জুজলপা
3: জুজলপা রাজেন্দ্র জু
0: জুজলপা শুনুন দিয়া
3: গোপাল ভূমি কেমন
0: গোপাল জি ইয়ে কত খেলা
3: মুখুন
0: সমাজে থাকুনে চুনা মেয়াবলে মালা ইয়ে কত আমদানি এখন পেয়েছিল মালা আমদানি জুইমা খরচে এত আমদানি দেয়মা অথে কর কর ইউখন হয়েছে মালা রাজ্যের পক্ষে পাখে সুবিধা ছুঁয়ে মরুচি তো আরে কর যে কে হো কর বড়ে হো মালা থাকে
3: এটি কী থো জনতা থেকে প্রত্যক্ষ রূপ জনজীবিকা কে সপটু জস্তে শিক্ষা স্বাস্থ্যে মতখে মতে কর কে খরচালা ও কর্মচারী চলো সে বেড়ে মালা চলো সে বেড়ে মাল টুহে সরকার টুহে মঙ্গাও খরচা মহলা তল বেড়ে মাল তলে বেড়ে মাল জীব খনিসা তল বেড়ে তো কর কাল বজাবটক ঠিকে জুল সে মরে আনলো চিনি কিলো সে পনের বিশ চিনি কিলো তখন ঠিকই জিয়ে দিল চেপন ঠিকই জিয়ে
0: দিল
3: তখন ঠিকই জিনিস আর সে বাজার সামান সেটা দৈনিক উপভোগের সামান জানে ঠিকই জুলো ওকে কড়পু কড়পু ফুলে মাল সে মিটল খেয়ে নাই সে গুলি চলে জুড় রিডিং এই বলে ওই তো আপনার গায়ে গাছ নেই ও সে কর্পোরে মালা সরকার সেটা সরকার সে আসে সরকার তো দিকে সরকার খেলা ঢুকে আসে ও খেয়ে আর নেওয়ালা পথে বসুন পথে ছিকে ধুয়ে কর্ম কাজে জঙ্গা
0: আসে আস পকে বাস ধরে সেটা গুলি সুখ সমৃদ্ধি ওই মালা আর্থিক মন্দি মরে আউনে বেরোজগারী নন্দা ছয় রয়েছে গুলি আস দুনে সেটা মানে
3: উপসরকারী সুবিধা সক্রিয় সচিব টে হলি কর্মচারী তল বড়ে যাব সক্রিয় সচিব টে মাও লাগো সেই সময় খেলা পচাত জানা সচিব মস্তি খেলা 아로 이미 도코님 돈이다 도코 밀려 주미 플라빈 도빈 도코 짓 기도엔 주인 해내 밀려 모두 기란테 이거 가서 도빈 도코 밀려
0: 세라 왜 소태 왜 말아 또 전다요 소마시아 중간 뛰어도
3: 중간 뛰어 빠까
0: 이빈 저도 지연자 아오 저 수라이도
3: 이빈 저 사타 보시 오니 보디 보시 오니 우리 성마에 저거 가
0: 맞아
3: 아들이 사타 보시 전에 소홀하다 보디 보시 소홀하다 나 내가 속게 사지 뭐 하래 내 아버지 이 아미 아사 사지 이빈 저 말아 나 100%
0: अले छिव पखिना छु नो अकाउंट छ त्यति फै 5 दिन छ 7 दिन छ नो 5 दिन छ 8 दिन 0 दिन थले के फोन इन्दिस निर्देशक कनल छ थाको नो अकाउंट जेलो पके आछि मे पखिना हुने थन त्यति मे लिस्टिङ पके जनावे दु आछि हुने थन नेपी सँग मे छन निने छि थन आ थन दु गबले गबले स्वस्ति मार्जनिया छन निने उजी वया निया छि थन उने स्वजल मार्जन पके उने तालो जित नेवा थ नेवा नेवा तेयाजिया चाहिँ नेवा यो पह लोमंगल लासा गठिजी थजे भाव दु थके सुरजबीर बसजारे ओकन चयादिगु लेचना मिदु सुरज बिन्जनकार अले सवाबियादिमा भाजुदु सुरजल मार्जन

저 마인 다이버리나 사선이하고 더 굴더고 빠치 컨카데 대역하는 저 지사 더구 구티 브리아르 바키나 저 지사 설라베가 사마단 저 사마단의 럼피나 지 운마고 더저구나 딘 외정도 그나 समस्यादै अन समाधान नपकनदो तर सल्लाह सुझाव चाहिँ जसमा अप्सन क्याखनीमा थजोगे जो मतितया थौ जजबके थुक्ताय आत्न बुटिकया जजयत जो चर्चा थाकेको जन जोगदो मुंगु इबिया चन्द्रबहादुर शाक्य नानी शोभा शाक्य गोपाल भूमि चिकन तर एक शोभा आग्नगन थजोगे बुटि दैदैगुन पल्सके जन थौ त जज थुले ले थुली सुतान्दाको ज्याजो नेकेत ग्वालिन चन्दिम बास जिरा मेर्न एक सुबे आ वहाँ थन मेउ छोप्न मेनिने थन ओ मेनिने थन ज्याजो पकिन जी राजेन्द्र डंगो न उजा पनि जे मा बा सुबे रेडियो थास सञ्चार 99.4 मेगा दिन चन्दिन इना पिन छन स्वस्ति मर्चिने थो स न पछि उजा पनि जे मा बा

ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल ल

Cup 2026 का अवसर में सीजीटीवी ने ल्याएको छ 3+3 वर्ष को वारंटी साथ ही 36,000 सम्म को कैशबैक सजिलो 0% ईएमआई को सुविधा नागरिकता भए पुग्छ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप सीजीटीवी खेल संगे भरोसा संगे।